0: बॉडीज इन अ स्पॉन्सर्ड मैनर।
1: अभी कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है।
2: फॉर सेवरल वीक्स नाउ इलेक्शन कमीशन हैज बीन अटैक्ड। फ्रॉम टाइम टू टाइम अटैक्स वर मेड ऑन इंडियन आर्मी, इंडिया सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इंडियन हिंदूज एंड EVMs। वी बिलीव दैट द कांग्रेस पार्टी इज स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट एनार्की एंड एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिसऑर्डर इन द कंट्री बाय यूजिंग द इलेक्शन कमीशन। बिफोर द सो कॉल्ड रैली एंड मार्च टेक प्लेस, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ political party to accurately place the issue before the people of the country and explain what is happening in the election commission and what is happening in the matter before the supreme court.
1: Pura vishay jo supreme court pe chal raha hai wo kya ho raha hai?
0: India's National Telemedicine Service, e-Sanjeevani, has crossed 50 crore teleconsultations, marking a significant milestone in the government's efforts to leverage digital technology to make quality healthcare more accessible, affordable and equitable for citizens across the country. The platform recorded over 50 lakh teleconsultations cumulatively across all 36 states and union territories. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on a five-day visit to Ghana, Cote d'Ivoire and Ethiopia from today. During the visit, Dr. Jaishankar will hold bilateral meetings with his counterparts and meet with leadership of all three nations to review close bilateral ties of friendship and cooperation. Discussions will cover the whole gamut of bilateral ties across sectors, including trade and economic development cooperation, capacity building and people-to-people ties. He will also exchange perspectives on regional and global matters of mutual interest. In men's cricket, the first T20 international of the five-match series between India and the West Indies to be held in Lucknow today. After winning gold at the 2026 Asian Games and a convincing 2-1 victory in the ODI series, the hosts will aim to continue their winning run against the visitors. And with that, we end this news bulletin.
3: நேரம் 12:10. ஆகாஷ்வாணி சங்கீத சாரல். எஸ்எம் விலாசினி அவர்கள் பாடியுள்ள பக்தி பாடல்கள் கேட்கலாம். பரூர் எம்கே அனந்தலட்சுமி அவர்கள் வயலின், யஷ்வந்த் ரவி அவர்கள் மிருதங்கம். முதலில் பூழியர்கோன் என்று தொடங்கும் நால்வர் துதி விருத்தம், தொடர்ந்து பிடியதன் ஒரு உமை, திருஞான சம்பந்தர் தேவாரம்

0: பின் பண்ண இல்லனா நாட் ஆகுது போடு. ஹே, இவ்ளோ அழகா டிரஸ் பண்ணிட்டு வரதே துப்பட்டாவை சும்மா பறக்க விட்டு ஜாலியா வண்டி ஓட்டுறதுக்கு தான் பாரு, எல்லாரோட கண்ணும் நம்ம மேலதான் இருக்கு.
1: அப்பவே துப்பட்டாவை கட்டணும் சொன்னல பாரு, இப்பவும் எல்லாரோட கண்ணும் நம்ம மேலதான் இருக்கு. அம்மா,
2: she is a fantasy.
3: நேயர்களே, இன்று இரவு 7:30 720 கிலோஹெர்ட்ஸ் முதன்மை அலைவரிசையில் இந்திய அரசின் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நல அமைச்சகம் வழங்கும் கிசான் வாணி.
4: இனி ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
5: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Defence Minister Rajnath Singh launches Fleet Support Ship 1 and lays keel for Fleet Support Ship 5 at Hindustan Shipyard in Visakhapatnam. Polling underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. E-Sanjeevani crosses 50 crore teleconsultations, marking a milestone in India's digital healthcare initiative. World Bank raises India's GDP growth projection by 0.5% to 7.1% for current fiscal. And India to take on West Indies in first T20 match at Lucknow this evening. Defence Minister Rajnath Singh has said India needs a strong and integrated maritime ecosystem to further enhance its maritime power and strengthen the country's defence capabilities. The Defence Minister today launched Fleet Support Ship 1, laid the keel for Fleet Support Ship 5 and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam. Addressing the gathering, Mr. Singh said the launch of Fleet Support Ship 1, keel laying of Fleet Support Ship 5 and inauguration of upgraded infrastructure at HSL mark important steps in strengthening India's maritime capabilities. He said Fleet Support Ship 1, named Surya, will strengthen the Indian Navy's reach, endurance and operational effectiveness. He said the new slipway and Goliath crane at HSL will further enhance the shipyard's capacity to undertake large shipbuilding projects.
6: वर्ष 2025 में
7: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड गॉट मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस अकॉर्डेड इन 2025 रिफ्लेक्ट्स इट्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंप्रूव्ड फाइनेंशियल पोजीशन. एचएसएल हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग इंडियाज मैरिटाइम एंड डिफेंस रिक्वायरमेंट फॉर मोर देन 8 डिकेड्स. इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द पास्ट डिकेड विद द कंट्री मूविंग फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एडवांस सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म डोमेस्टिकली. द नेवी शिपयार्ड्स डीआरडीओ एकेडमिया इंडस्ट्री MSMEs and startup needs to work together as an integrated team to build a strong national maritime ecosystem.
6: Aur tezi se execute karega.
5: Mr. Singh said Hindustan Shipyard Limited has played an important role in meeting India's maritime and defence requirements for more than 8 decades. He said the shipyard's Mini Ratna Category 1 status, accorded in 2025, reflects its transformation and improved financial position. Polling is underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Voting is taking place for Madurantakam and Dharapuram assembly seats in Tamil Nadu, Thattanchavadi in Puducherry and Rajinagaran Nondigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat where voting is taking place is Nagaon in Assam. Counting of votes will be taken up on Friday. The 8 candidates fielded by the BJP for the upcoming Rajya Sabha elections from Uttar Pradesh filed their nomination papers at the Vidhan Bhavan in Lucknow. UP Chief Minister Yogi Adityanath, BJP State President Pankaj Chaudhary, Deputy CMs Keshav Prasad Maurya and alongside Senior

0: ஒலித்த அந்த பாடலுடன் திரைக்காணம் நிறைவு பெறுகிறது. தொடர்வது ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: Good evening. This is Akashvani. I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Government approves setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Clears 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund. Prime Minister Narendra Modi hails decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of the government. Defence Ministry inks 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Peaceful polling held for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. Results on Friday. Belgian-born scientist Francis Hulson wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. In men's cricket, West Indies set a target of 172 runs for India in first T20 of 5-match series in Lucknow. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8%,
3: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7 to 8%, द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलॉन्ग विद न्यू रेलवे लाइन्स, वाटरवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स. टू इंश्योर दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर प्लान इन एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड मैनर, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्यू इयर्स अगो. नाउ कीपिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इन माइंड एंड इंटीग्रेटेड Transport and Logistics Authority will be established to study and plan all these aspects.
2: एक Integrated Transport and Logistics Authority का निर्माण किया जाएगा.
1: Mr. Vaishnav said the cabinet has also given nod to the establishment of 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund for equity investments in small and medium enterprises.
2: इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का
3: 10,000 करोड़ रुपीस एमएसएमई ग्रोथ फंड विल बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल टू एमएसएमईज विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल. द फंड विल बी ऑपरेटेड विद द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड विल बी प्रोफेशनली मैनेज्ड टू इंश्योर इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ कैपिटल. द फंड विल प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड एमएसएमईज विद नियरली